0: थियो
1: एनुअल सेरेमनीको दिन त जे परे पर्ला प्रपोज ठोक्दिउँ कि क्या हो
0: साँच्चै एनुअल सेरेमनी चाहिँ कहिले हो नि

0: को इन्टरनेट गेट कनेक्टेड स्टे कनेक्टेड।
1: नयाँ जडानको लागि सम्पर्क 9028-13-424 र 9058-14-175।
2: शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6।
3: शुक्ला गण्डकी टाइम चेक।
4: यति बेला रातिको ठिक 8 बज्यो।